सर। और ये पूरे साल विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्था पर मान सके देश भर 2.5 लाख भन्दा बड़ी विद्यार्थी निःशुल्क रूप में पढ़ना पाने उल्लेख कर नया पत्रिका को अर्क खबर में अगे बढ़ाने काम सशस्त्र प्रहरी को विधेयक शीर्षक में

अवसर मांग लेती चाहे गुस्सा खा लेता हूँ मैं दिखाए तो आरो ये 7 बजे को बिहार पुरुष संदेश के लिए 5:30 बजे मौसम बुलेटिन।

0: तथाकथित वैदिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वसम्मत रूपमा टिप्पणी यहाँ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पदाधिकारीले कौशल्य अस्पताल बाँसगढीमा सम्पर्क गर्न बाध्य अनुरोध गराती
1: अस्पतालले दिएका सेवा
0: 24 घण्टा डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराजाए
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिरहेछ
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यूरो सर्जरी हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गराजाए
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटुको एक्सरे सेवा उपलब्ध सुविधा सम्पन्न

0: खिलाड़ी पीड़ित से उपचार करी था।
1: नशा द्रव्य ग्रामीण करके बिना प्रेशर फिजियोथेरापी तथा एक्यूपंक्चर थेरापी से सफल उपचार कर गयी।
0: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करी था। असहाय नागरिक, एक महिला, अनाथ बालिका, अपंग ज्येष्ठ नागरिक होकर पुनः सेवा में 10% छूट की व्यवस्था करी था। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी पटिया प्लांट पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 दस्तरी पर किया संसदीय कोर्ट को लेकर 14

0: संभव नियमित रूप में आयरन कैल्शियम खैरिश हटाई स्वस्थ बताई सुरक्षित परिवार
1: दुर्गा स्वास्थ्य कार्य भारतीय जनहित में कार्य सर्विस।

0: कोई संतुलित खाना खाए, व्यायाम शब्द करी, धूमपान नदीनामे से दूर रही, तनाव नियंत्रण करी, आज निगर कालिक जीवन अजरा मुसलमानों को सिपाही स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित में जारी संदेश।
1: जो कोई युवा ऐसा था

अच्छा जैसा सुना सुनकर बस कहीं नगर पालिका वालों परवर्ती जड़ी बूटी उद्योग राष्ट्रीय स्मारता कई किस्म का आवश्यकता हम लोगों को प्रवृत्ति जड़ी बूटी उद्योग आता औषधि उपचार

संध्या सुबह 6 बजे कुमार संदेश में अपना और स्वागत का संध्या के संग्राम में संदेश पर दिया प्रश्न राजापुर बाघी का रेडियो पत्रपुर कोलपुर रेडियो हाथेमारो चारही गांव पालिका बाकी राष्ट्रीय कसम प्रसारण के बाद हमारे संदेश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से उदयमान क्रिकेट खिलाड़ी करण नगर थाना निःशुल्क शिक्षा और तालीम बिना नगर प्रमुख कर्ता को प्रतिबद्धता अपांगता समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत पांच दिनिया व्यवस्था एक पशुपालन तालीम बढ़िया मंजिल लुम्बिनी प्रदेश का बजट 37 अरब 38 करोड़ स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकता सुदूर पश्चिम प्रदेश का 37 अरब 70 करोड़ बजट 18 महीना में 10 खरब

0: 们说的你。ये बात सशक्ति कलान रूपांतरण तथा नवोपर पतन परियोजना अंतर्गत नदिया का ठाकुर बाबा नगर पालिका और मधुपुर नगर पालिका में सेवी तथा बंग तालीम संबंधी तीन दुनिया प्राप्ति तालीम इंजरदा प्लान इंटरवेशन नेपाल को साझेदारी तथा पांच उन्नीस को क्लब का स्वागत में संचालन परियोजना तालीम कुल 91 जना युवा सहभागी थे जिन मध्ये 65 जना बंग पालन और 29 जना सेगरी पालन संबंधी तालीम दिलाफ्रीका तीन समूह संचालन निर्माण पशुपालन व्यवसाय में आर्थिक पक्ष का विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कार्यक्रम में मधुबन नगर पालिक का पशु सेवा शाखा का गणेश बहादुर बोहरा और ठाकुर बाबा नगर पालिक का पशु सेवा शाखा प्रमुख चंद्र बहादुर महतरा सहजीकरण करा कार्यक्रम का समन्वय पार्टी उन्नीस को क्लब का परियोजना संयोजक राजकुमार खड़का कर फील्ड ऑफिसर सुनीता चौधरी को सृजना थारू सहयोग कर युवा मसी को आत्मविश्वास विकास प्रति पशुपालन अति रोजगारी का माध्यम बनाने उद्देश्य संचालन कैकिलक तालीम ने स्थानीय स्तर में आत्मनिर्भरता को उद्यमशीलता विकास में टेवा पुग्न अपेक्षा कैकिला प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 का लाख कुल 37,38,45,00,000 रूपया का बजट विनियोजन करता काल प्रदेश सभा में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री धनेन्द्र कार्की बजट प्रस्तुत करा कुल बजट मध्य 4,11,27,00,000 पूंजीगत ओवर 22,71,65,40,000 रूपया विनियोजन कई वित्तीय व्यवस्था सहित कुल आकार 37,38,45,00,000 रूपया कायम कई के बाद सरकार संयुक्त लुम्बिनी सुखी नागरिक तथा कार्य सोच अनुसार प्रदेश संरचना सुदृढ़ीकरण आर्थिक समृद्धि वित्तीय सुशासन और निजी क्षेत्र का सहभागिता विस्तार में प्राथमिकता में ठलक जमा के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र का लाख 5,65,00,000 बजे छुट्टा के बाद लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायत का संरचना निर्माण प्रभाव रूपये 12,00,000 रूपये जनता के बाद से टेली मेडिसिन सेवा संचालन और प्रादेशिक अस्पताल होना 200 शैया में विस्तार करना योजना समावेश कई के बाद होती पूर्वाधार और 10,18,45,00,000 बजे प्रयोजन करते 237 सड़क आयोजना हला बहुवर्षीय योजना में आदत बढ़ा के बाद शहरी विकास तथा खाने पानी और 4,15,57,00,000 प्रयोजन कई के बाद से एक घर एक थर अभियान हला निरंतरता देखे बाद शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्र में 3,05,00,000 छुट्टिया के बाद परिवर्तन केन्द्र स्थापना का लगी 18,00,000 विनियोजन कई बात उसे उद्योग तथा पर्यटन का लाख 1,40,00,000 कृषि तथा सहकारी क्षेत्र का लाख 1,78,00,000 ऊर्जा तथा सिंचाई का लाख 2,81,00,000 और युवा तथा खेलकूद का लाख 38,00,000 बजेट विनियोजन कई बात नेपाल सरकार का पूर्व अर्थमंत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान उन्मगर भाषा अनुसरकारी कामकाजी भाषा का रूप में मान्यता दिएकोबाट नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश सिद्धांतला टिकाउ कार्यक्रम तीन श्री चौर मसूरिया में आयोजित 5 दिनीय प्रथम पुण्य महोत्सव तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम उद्घाटन करते वहां लुम्बिनी प्रदेश में मगर समुदाय का जनसंख्या करीब 14.6% रहते सरकारी कामकाज में भाषा समावेश विनिशेखन दुखद उल्लेख करवाट वहां मगर भाषा का प्रयोग प्रति प्रेरक प्रति चिंता व्यक्त करती भाषा संस्कृति और पहचान का संरक्षण संवर्ण व पुस्ता हस्तांतरण पढ़ना आवश्यकता उल्लेखवाट संघ राज्य से अधिकार सुनिश्चित कर मगर समुदाय निरंतर खबरदारी कर पढ़ना बतवाट नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खनु प्रसाद मगर का अध्यक्षता में निमंत्रण कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रुखा मगर प्रदेश सभा सदस्य माया पुन भाषिक उपाध्यक्ष जीवन रुखा मगर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जीतू तराजू मगर लगाए कर मगर भाषा संस्कार और संस्कृति संरक्षण में राज्य विशेष ध्यान दे पड़ना स्थानांतरणा कार्यक्रम मगर संस्कृति का खबर निर्माण करा सहयोग करना प्राथमिकन सम्मान कैकी रहा मगर संस्कृति का खबर निर्माण करना उद्देश्य संचालन कैकी रहा महोत्सव असार प्रांत संचालन रहा महोत्सव में मगर भाषा कला और संस्कृति संरक्षण पूरे व कौड़ा नित्य युवा तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत का विभिन्न कार्यक्रम संचालन करना आयोजक समय लगा
1: अपने महिला से लोकेशन और जिला परिजन से भाई से दिखाना काम से रासायनिक मनोभाव से समस्या में ऑफर लाने वाला उत्पादन वृद्धि करे यूरिया डीएपी और पोटास का सचिन मॉल खर्चा बचे गए जिसने हरे पद दस्ते जीवन से किसान मित्र सहकारी मॉल का लाइव संतना फूल खामो मॉल बिंग भज लाइन को छोटे से मॉल भी पैदा समस्या को के हर बात सुनिए विषय में समझिए हम तुम्हारे चंद्री
0: मुख्य आधार हो तर खेती का मुख्य समय में कबू सिंचाई का कबू मल अभाव से किसान का नगर पालिका स्थित

0: कहेगा सरकारी संचालक समिति का सचिव नाम के स्वर्थाल पर आपूर्ति कम निराकरण समस्या विरोध कर बैठा
1: अब लोगों ने कहा कि राज्य में राज्य हमारे किसान मंडल समन्वय प्रकट कर रहे हैं त्यसपछि उनीहरू जिल्लामा पालिका पालिका पालिकामा सरकारी सहकारी सहकारी भागले अब भागहरू सहकारी सरकारमा सदस्य तत्काल हाम्रो जीविका अहिले म चाहिँ हाम्रो यशस्वी मनाउने यशस्वी मनाउँदाखेरि बिना छुट्याएकै प्रणाली हुँदैछ उहाँहरू यशस्वी
2: सरकार चाहे

भाषा का माध्यम देशले भाइहरूमाथि तब समाचार प्रत्येक वर्ष कुशलका प्रार्थिक सुन्दरिया गौरी शङ्कर सिंह सुन्दरिया बिन्दु कुमार रेडियो दुर्गा एफएम 93.5 बाट

वो अपना किला का रेडियोलॉजी किला के पैतृक तकरी से बाटी किले पर रिपोर्ट के साथ अभ्यास किया प्रतिमा का अपना आज हुआ वो उससे अपना सामान अभ्यास किला के पैसे ख्याल किया।

0: सैनिक आज हमें तो काम करते हैं एटा दूसरो प्रक्रिया हमारे कुछ महीने सैनिक मंत्री बेला हमसा काम कर जब खेत में अलग बैठक भैया
1: धान रोप्नअघि जान्नै पर्ने कुरा त्यसले श्रृङ्खला जिल्ला मौसम पार्टी सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।

नहीं है। अब हमारा कार्यक्रम सफल कोई पहले की वो नहीं है, फिर सकावट हुई। एक तो बनम एक तो बकवा था, दूसरा एक तो नहीं है वो बनम काटी कर दिन वाले में पसी था, दूसरे बकवा ऐसे मने जाना देखा लो कहा मौत बनम ताहर काटी कर दिया गया वो मने ये कहा राजू बना हो मौत बना हो तब दूसरे बकवा कहा तब बड़े बड़े बाल दिया मुझे ना

0: pertama of another sangha, maybe to ma iron caps and Spanish to die. So a dive sword sheet for you are.
1: तेरे गुरुवार का एक तो साफ करेगा, स्वास्थ्य करेगा, बढ़िया से जमीन सुधारेगा, जिस